शुभ प्रभात आदरणीय श्रोता, बिहान को 6:25 अनि 27 सेकेंड भइरहेछ। स्वागत जनाउन चाहन्छौ आकाशवाणी खरसाङ एफएम 103.5 मेगाहर्जमा। आज आइतबार, विक्रम सम्वत 2083 साल श्रावण 31 गते, तदनुसार अंग्रेजी महिना अगस्त 16 तारिक 2026। प्रभातकालीन अधिवेशनका प्रस्तुतिहरूको साथ उपस्थित छु म शोभना, प्रसारण सहयोगी अभिषेक अनि प्राविधिक पक्षबाट सचिन। आजको दिन शुभ अनि मंगलमय रहोस् भनी कामना राख्दछौं।

0: अब सुनुपसार गरी सुनाइरहे छौ आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको क्रमैले संस्कृत अनि हिन्दीमा समाचार।
1: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। देशेन ह्यः अशीतितमः स्वातन्त्र्यदिवसः आचरितः। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् राष्ट्रियध्वजम् आरोहितवान् तथा अनेकाः महत्वपूर्णाः घोषणाः कृतवान्। राष्ट्रं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् विगतेषु द्वादशवर्षेषु देशस्य कोटिशः नागरिकाः स्वसंकल्पेन समर्पणेन च देशं नूतनासु उन्नतिषु नेतुं सर्वसम्भवं प्रयत्नम् अकुर्वन्। प्रधानमन्त्री सबलं प्रतिपादितवान् यत् बृहन् स्वप्नाः दृढतराः संकल्पाश्च राष्ट्रस्य प्रयत्नानां समग्रं स्तरं सामर्थ्यं च वर्धयन्ति।
2: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
1: विकसित भारताय यूनां महिलानां च सशक्तीकरणे बलं दत्त्वा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विभिन्नानां लोकसेवा परीक्षाणां कृते निर्धन मध्यम वर्गीय परिवाराणां युवभ्यः निःशुल्कम् अन्तर्जाल माध्यमेन प्रशिक्षणं प्रदातुं घोषणां कृतवान्। सः इदमपि घोषितवान् यत् प्रशासनेन आगामि एकवर्षे एककोटि युवभ्यः AI इति कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशलस्य प्रशिक्षणं प्रदातुं निर्णयः कृतः। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य राजस्थानस्य अलवर नगरे स्थिते अलवर सरस दुग्ध परिसरे नूतनस्य दुग्ध संयंत्रस्य आधारशिलां स्थापयिष्यति। सहकारिता मंत्रालयेन संसूचितं यत् अस्मिन् अवसरे अन्तर्जालीय माध्यमेन शिलान्यासः क्रियते तथा राजस्थानस्य 17 जनपदे

0: अपेक्षु द्विषष्ठ्युत्तर द्विशताधिक षड् सहस्र कोटि रूप्यकाणां विभिन्न विकास परियोजनानां उद्घाटनमपि अन्तर्जालीय माध्यमेनैव करिष्यते। एतदतिरिक्तम् आजीविकोत्सवस्य अन्तर्गतं नव नियुक्तेभ्यः पञ्चशताधिक दश सहस्राधिकेभ्यः कर्मिभ्यः नियुक्तिपत्राणि अपि वितरिष्यन्ते। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्यारभ्य तमिलनाडु राज्यस्य द्विदिवसीय यात्रायां भविष्यति। यात्रावधौ असौ चेन्नई चेंगलपट्टु तिरुवरूर तंजावूर नगरेषु विविधेषु शैक्षणिकेषु स्मारकेषु साहित्यिकेषु च कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति। अद्य श्री राधाकृष्णन् चेंगलपट्टु नगरे एसएमआर विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थायाः द्वाविंशतितम दीक्षांत समारोहे भागं ग्रहीष्यति। सः चेन्नई नगरे नागालैंड मणिपुर पश्चिम बंगाल राज्यानां पूर्व राज्यपालस्य प्रथम पुण्यतिथेः कार्यक्रमे अपि भागं ग्रहीष्यति। ततः परं उपराष्ट्रपतिः चेन्नई नगरे इकोज ऑफ अ नेशनलिस्ट माइंड इति पुस्तकस्य विमोचन कार्यक्रमे अपि भागं ग्रहीष्यति। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली परिवहन निगमस्य बसयानेषु महिला यात्रिणां कृते प्रचलितायाः कागद निर्मित पाटलचटिका व्यवस्थायाः अवधि अस्य मासस्य 31 दिनांक पर्यन्तं विस्तृतः अस्ति। परिवहन विभागस्य आदेशानुसारं निःशुल्क बस यात्रायै महिलाः डीटीसी अथ दिल्ली क्लस्टर इत्येतयोः बसयानेषु कागद निर्मित पाटलचटिकायाः उपयोगं निरन्तरं कर्तुं शक्नुवन्ति। प्रथमवारं आयोजिता सूर्यपथ त्रिरंग वैश्विक यात्रा ह्यः सम्पन्ना। इयं यात्रा पश्चिमदिशि फिजी देशादारभ्य संयुक्तराज्य अमेरिका पर्यन्तं 54 देशेषु बहुषु च कालक्षेत्रेषु सम्पन्ना। अमृतोद्यानम् अद्यारभ्य आगामि मासस्य 15 दिनांक पर्यन्तं सामान्य जनेभ्यः उद्घाटितं भविष्यति। अस्माकं वार्ताहरानुसारं उद्यानं प्रातः 10 सायं 6 पर्यन्तं उद्घाटितं भविष्यति। अन्तिमप्रवेशः सायं 5 पर्यन्तमेव भविष्यति। अनुरक्षणकार्याय उद्यानं प्रत्येकं सोमवासरे पिधानं भविष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
2: हमने पिछले दिनों AI इंपैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 में 1 युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमरीका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम की 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करेगा। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। परीक्षा एजेंसी ने बताया कि उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार निशुल्क बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकते हैं। यह योजना आज से लागू हो गई है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुई हवाई हमलों की वीडियो इस बात का प्रमाण है। श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत अपनी पहली पारी में 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। वर्षा के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का ही हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: अघिल्लो प्रस्तुति रहेको छ बिहानी सूचनाको कार्यक्रम शुभ प्रभात, जसमा खेतीपाती बारे केही सल्लाह अनि सुझाव साझा गर्नेछौ, साथै सुनाउनेछौ आधुनिक गीत। खेतीपाती बारे सल्लाहमा आज कुराकानी गर्नेछौ सुन्तलाको स्याहार सुसार बारे। त्यसअघि आनन्द लिनुहोस् आधुनिक गीतको। सुनु रहेको स्वरमा संगीत बसन्त छेत्रीको।

0: अब सुन सागरी सुनाउने छौ आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको क्रमैले हिन्दी अनि त्यसको लगतै पछि अंग्रेजीमा समाचार
1: हुई है और साथ साथ हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक देशों से होकर गुजरी सूर्य पथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
4: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
3: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
4: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है,

0: उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। उन्होंने लोगों से महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
0: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर श्री मोदी ने कहा कि जो खेले वो खेले मंत्र के अंतर्गत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
0: जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गाँव गाँव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिन तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
2: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन तमिलनाडु की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में सरस डेयरी परिसर के नए संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। वे विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राजस्थान के 17 जिलों में

0: नेताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगें पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के पात्र नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराना है।
3: लगभग 15 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का नगद उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत कार्ड प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निशुल्क जारी किए जाएंगे। राज्य के कुल 1307 निजी और 627 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र न होने वालों के लिए आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 80 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
4: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि बैतरणी नदी में बाढ़ की चौथी लहर आ गई है। भद्रक जिले के अखुआपदा में नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर को पार कर गई है और आज सुबह 7 बजे तक 18.38 मीटर पर बह रही थी। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि भद्रक जिले के कई गाँव अलग थलग पड़ गए हैं। राजघाट पर सालंदी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जहां खतरे का स्तर 17 फीट है और नदी 16.50 फीट पर बह रही थी। गिंगुटी और कोकिला नदियां भी उफान पर है। IMD ने मयूरभंज और बालेश्वर के लिए रेड वार्निंग और 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शक्ति की सप्तधारा का आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से कहा, 7 शक्तियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, 80 पर देश, जुबां पर युवा। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लाल किला से वंदे मातरम की गूंज के बीच मोदी ने राष्ट्रगीत गाया, फिर तिरंगा लहराया। आम्बेडकर, नेहरू, पटेल और मुखर्जी का योगदान याद किया। जनसत्ता के अनुसार दिमागी नक्सल अराजकता और हिंसा फैलाने के रास्ते खोज रहे हैं। दैनिक जागरण के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी का मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग। 1 करोड़ युवाओं को AI प्रशिक्षण का ऐलान। कहा, महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ आए राजनीतिक दल। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री का लाल किला से संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने को अपने शासन की बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल कर कुछ ताकतों पर करारी चोट की है। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, बस्तर के 93 गांवों में पहली बार दिखी तिरंगे की ताकत। नक्सल प्रभावित रहे इन गांवों में आजादी के बाद स्वतंत्रता

0: दिवस का सार्वजनिक आयोजन। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, युवा कौशल के उचित उपयोग से देश को हो सकता है भारी लाभ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi urges all parties to support implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies to strengthen women's contribution in shaping India's policies. Prime Minister announces free online coaching for competitive exams aspirants to ease financial burden on their families. 1 crore youths to be trained in artificial intelligence in next 1 year. Suryapath Tiranga, first of its kind campaign involving Indian missions in over 50 countries, concludes in San Francisco. Government rolls out foreign asset disclosure scheme for small taxpayers. And in chess, world number one Magnus Carlsen retains eSports World Cup title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has announced to provide free online coaching for students belonging to poor and middle-class families. In his address to the nation, Mr. Modi said, the move is aimed at easing the financial burden of aspirants preparing for competitive exams. He said this will save thousands of crore rupees of middle-class families in coaching classes.
3: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
2: The Prime Minister said that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things, cost, quality and skill.
3: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
2: The Prime Minister said today India is making its place in the world of sports. Mr. Modi said in 2030, India will host the Commonwealth Games. Prime Minister Narendra Modi has urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. In his Independence Day address to the nation from the ramparts of the Red Fort, Mr. Modi asked them to step forward to honour women and ensure that country's women secure 33% representation in the legislative assemblies and the Lok Sabha as soon as possible. He said that women should be given the opportunity to contribute to shaping India's policies.
3: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
2: The first of its kind Suryapath Tiranga Global Relay concluded yesterday, completing its journey from Fiji in the east to the United States in the west, across 54 countries and multiple time zones. More from our correspondent.
4: External Affairs Ministry said that the Suryapath Taranga initiative was celebrated as part of the Har Ghar Taranga campaign launched from the High Commission of India in Fiji. The relay carried the spirit of the Taranga from one sunrise to the next, bringing together

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, फटे फटे या पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: आनन्द लिइरहनु भएको छ फिल्मी सङ्गीतको अब अन्तिम कोशेली सुनाइरहेछौँ फिल्म रुदालीबाट लता मङ्गेशकरको स्वरमा, शुभ गुलजार अनि सङ्गीत भूपेन हजारिकाको।

0: नंबर 111।
1: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं धर्मेंद्र मणि राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम का फॉलो अप प्रोग्राम है और उनके द्वारा लिए गए विषयों का विस्तार है। इस बार मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय खेलों के बारे में बहुत सी बात की थी। पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ कहा था।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है।
1: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना प्रधानमंत्री जी के मन की बात का वो अंश जिसमें उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय टीम को देशवासियों की तरफ से शुभकामनाएं भी दी थीं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और आशीर्वचनों के बाद तो ग्लासगो में कमाल ही हो गया। हमारे खिलाड़ियों ने न सिर्फ शामिल किए गए खेलों में पिछली बार से ज्यादा पदक जीते बल्कि मैदान से पोडियम तक की इस यात्रा में कई इतिहास भी रच दिए। इस दौरान खेल के मैदान पर भारत की बेटियों की ताकत को भी पूरी दुनिया ने देखा। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ भारतीय खेल प्राधिकरण साई के उप महानिदेशक और आईपीएस मयंक श्रीवास्तव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन, आपका भी बहुत स्वागत।
4: धन्यवाद।
1: तो अब मैं अपने मन में उठ रही जिज्ञासा और सवालों के साथ साथ आप श्रोताओं के प्रश्नों को लेकर भी तैयार हूं अपने स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से उसका जवाब जानने के लिए। सवालों की शुरुआत करते हैं मयंक श्रीवास्तव जी के साथ। मयंक जी, प्रधानमंत्री जी ने अपने साथ साथ देशवासियों की तरफ से ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक के लिए मैदान पर पसीना झोंक रहे खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी और पदक जीतने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री जी के मन की बात के इन शब्दों ने जैसे जादू की झप्पी का काम किया और उनके शब्दों के बाद ऐसा असर हुआ कि पदकों की झड़ी सी लग गई और हमारे खिलाड़ियों ने कमाल ही कर दिया। पिछले बार के पदकों का आंकड़ा पीछे छूट गया, क्या आपको लगता है कि कमाल प्रधानमंत्री जी के ऊर्जावान शब्दों का असर था?
3: निश्चित रूप से, हम लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी खेलों के सबसे बड़े लवर हैं और वो बहुत चाहते हैं कि भारत के खेलों की उन्नति हो और उसका जीता जागता उदाहरण है जिस प्रकार की स्कीम भारत सरकार ने उनके मार्गदर्शन में लेके आए हैं, जो कि नया खेलो इंडिया है और जो टॉप स्कीम है। आप अगर देखेंगे इन खिलाड़ियों का जो भी इनका रिकॉर्ड है और जहां से भी इनको सहायता मिली है, यदि आप उनका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि खेलो इंडिया और टॉप स्कीम का बहुत बड़ा योगदान था। तो न सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों की प्रेरणा इन खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी पूंजी थी, बल्कि वो जो योजनाएं लेके आए हैं खेल के क्षेत्र में, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस अभूतपूर्व प्रदर्शन के लिए।
1: और राजा रमन जी, अब तो ये जाहिर सी बात है कि जब खुद प्रधानमंत्री जी खेल में इतनी रुचि लेते हो तो खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होना तो स्वाभाविक सी बात है। तो आप मानते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी खुद इतना इंटरेस्ट लेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा तो आएगा ही आएगा?
5: 2014 से ये देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा ही खिलाड़ियों से गेम्स के पहले मिलते हैं, गेम्स के बाद मिलते हैं। खिलाड़ी को पता है कि देश के सबसे बड़ी व्यक्ति का प्यार उनको मिला है।

0: के मार्गदर्शन में अच्छे नतीजे आए हैं, चाहे वो टोक्यो ओलंपिक गेम्स की बात क्यों न हो, पेरिस की बात क्यों न हो, पिछले बार एशियाई खेलों की बात क्यों न हो, या कोई भी राष्ट्रमंडल खेल की बात क्यों न कर लें, खिलाड़ियों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि हमारा देश हमारे साथ है। जब भारत सरकार का इतना सपोर्ट मिलता है, एक टाइम था जब आपको 3-3 महीने वेट करना पड़ता था, आप अपना प्रपोजल दे रहे और प्रपोजल के 3 महीने बाद आपको पता चला कि क्लियरेंस आधा हुआ है या नहीं हुआ है। आज की तारीख में क्लियरेंस 3 या 4 दिन में मिल जाता है, खिलाड़ी जब मांगता है तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और जो सॉफ्ट पावर है खेल, इसको प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं, उसका पूरा फायदा भारत देश को मिल रहा है। आप देखेंगे पिछले सालों में भारत का जो स्तर है वो उठता जा रहा है और इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: और मैम जी, हमने अन्य क्षेत्रों की तरह नए भारत में खेल के क्षेत्र में भी बदलाव को देखा है और महसूस किया है। प्रधानमंत्री जी के मैदान से पोडियम तक की सोच और खेलों को भी अन्य क्षेत्रों की तरह महत्व देने की रणनीति का भारत के खेलों पर कितना सकारात्मक असर हुआ है?
2: निश्चित रूप से, पहले भी बात कर चुका हूँ उनके विजन की, उनकी दूरदृष्टि की और किस प्रकार से भारत सरकार ने नई योजनाएं ले आई हैं। खेलो इंडिया और टॉप्स, ये दोनों स्कीम इसी मोटो को चरितार्थ करती हैं जिसको आपने अभी कहा, मैदान से पोडियम तक को, क्योंकि खेलो इंडिया आपको ग्रास रूट क्षेत्र में सपोर्ट प्रारंभ करती है। और ये पहले जो खेलो इंडिया का स्वरूप था, मैं उसको 360 डिग्री सपोर्ट बोलता था, एक खिलाड़ी को, इकोसिस्टम को, वो 360 डिग्री सपोर्ट करती थी। अभी जो नई खेलो इंडिया कैबिनेट ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश और उनके मार्गदर्शन में पास की है, वो 720 डिग्री सपोर्ट है। और टॉप्स को तो मैं तथास्तु स्कीम बोलता हूँ, शायद ही ऐसी योजना कभी भी आई हो कि जिसमें खिलाड़ी जो कि टॉप्स एथलीट है, एलीट एथलीट है, टॉप्स का कोर एथलीट है, वो कुछ भी मांगता है जनरली उसको दिया जाता है। ये इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम इन दोनों योजनाओं ने खड़ा किया है कि आज खिलाड़ियों के लिए किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान पे और किसी भी करियर के उनके किसी भी पड़ाव पे जो समस्याएं हैं उसका कोई असर नहीं होता है
1: जी। और राजा, एक कहावत बड़ी मशहूर हुआ करती थी या है भी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। क्या आज भी ये कहावत सच दिखती है? अगर नहीं तो आम लोगों के बीच खेलों को लेकर सोच में कितना और कैसा परिवर्तन आपने महसूस किया है?
0: रविंद्र, पूर्ण रूप से बदल चुका है। आज की तारीख में आप खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब वाली बात है। ये मेरी बात नहीं, प्रधानमंत्री जी की बात है। और ये सच है कि खिलाड़ी को आज पता है, खिलाड़ी के घर वालों को पता है कि आप खेल के माध्यम से अपना पूरा जीवन संभाल सकते हैं। आपको पढ़ाई की जितनी जरूरत थी वही जरूरत आज खेल की महसूस हो रही है लोगों को। अगर आप एक्सेलेंस की ओर बढ़े जा रहे हो तो आप पढ़ाई शायद कम कर लें, लेकिन आप खेल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के दिल को जीत सकते हैं, राज कर सकते हैं। ये कई खिलाड़ियों को समझ आ गया है। और अगर हम खेलो इंडिया मिशन, जो नई मिशन पिछले दिनों लॉन्च हुई है, उसकी अगर बात करें तो पिछले खेलो इंडिया स्कीम से अगर कंपेयर करते हैं तो 8 गुना पैसा बढ़ा है 5 सालों में। करीब 36,000 करोड़ की बात हो रही है। ये कम पैसे नहीं होते धर्मेंद्र। एक देश की सरकार अगर जुड़ जाता है खेलों के साथ इस तरीके से, जाहिर सी बात है कि आगे ही बढ़ेगा देश। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे एथलीट का डेवलपमेंट हो, चाहे कोचेस का डेवलपमेंट हो, चाहे सपोर्ट स्टाफ का या स्पोर्ट्स साइंस की बात करें, हर तरीके से आगे बढ़ने की बात हो रही है। अगर हम सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं और पूरा फायदा उठाते हैं इस स्कीम का, तो भारत 2036 के जो ओलंपिक गेम होपफुली भारत में ही आयोजन होंगे, वहां पे अच्छा प्रदर्शन, अच्छे नतीजे, 20 मेडल उनके आसपास या टॉप 5 वाली पोजीशन का पूरा उम्मीद लेके बैठ सकते हैं
1: जी। तो मैं जी, पहले हमारे खिलाड़ी मैदान तक तो पहुंचते थे लेकिन पोडियम तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। इसकी वजह खेल संसाधनों की कमी थी, मैदान की कमी थी और साथ ही साथ खेलों के जरिए नौकरी ना मिल पाने की एक जो सोच थी वो बड़ी समस्या थी। बहुत से बच्चे इन दुश्वारियों के चलते चाहकर भी खेलों की तरफ नहीं जा पाते थे, करियर नहीं बना पाते थे। अब नए भारत में इन बुनियादी मुद्दों पर कितना काम हुआ है?
2: मैं तो ये बोलूंगा कि आपने जो पहली लाइन बोली कि खिलाड़ी मैदान तक तो पहुंच जाते थे, वहां से ही शुरू करता हूँ। एक्चुअली मैदान तक भी नहीं पहुंच पाते थे। वजह ये थी कि अगर आप एनालाइज करें, विश्लेषण करें, तो आप ये पाएंगे कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में, हमारे करीब 750 से थोड़े से ऊपर डिस्ट्रिक्ट है, सभी जगह खेलों का एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं था। खेलो इंडिया जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से उद्भूत ये योजना है, इसमें सबसे पहले ये कमी महसूस की गई कि सारे जगहों पे, सारे स्थान स्थानों पे कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है, तो ये तय किया गया कि हर जिले में हम कम से कम एक खेलो इंडिया सेंटर खोलेंगे। खेलो इंडिया सेंटर वो एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होगा, वो जगह होगी जहां पे खिलाड़ी आएगा और खेलेगा, कम से कम 25 खिलाड़ी वहां पे खेलेंगे एक पर्टिकुलर खेल का, हर जगह पे एक

0: एलीट सिस्टम भी खड़ा हो गया। भारत सरकार को यह भी गुमान था कि सारा कुछ वही नहीं कर पाएगी, तो कुछ लोग प्राइवेट लोग भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनको खेलो इंडिया अक्रेडिटेड एकेडमी बनाया गया। तो इस प्रकार से एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ। अब ये खिलाड़ी खेलेंगे तो इनको खेलने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक अनुभव वाला एक हमें खेल का प्रतियोगिता देनी चाहिए। तो खेलो इंडिया गेम्स का एक सिस्टम शुरू हुआ, यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम, विंटर गेम, पैरा गेम। विंटर गेम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से पहले जब से ये शुरू हुआ है खेलो इंडिया में, भारत में कोई जानता नहीं था विंटर गेम। नेशनल गेम्स तो होते हैं, ओलंपिक और एशियन गेम्स के साथ पैरा गेम्स भी होते हैं, परंतु ये प्रथा नहीं थी। और ये पैरा गेम्स शुरू हुआ खेलो इंडिया में, वो भारत में एक तरह से नेशनल गेम है पैरा स्पोर्ट्स में। तो अब यहाँ से खिलाड़ी जो खेले, जिनको हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव दिया, अपनी कम्पिटेटिव स्किल को निखार सके, उनको एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट कमेटी, खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में एंड डेवलपमेंट वाले वर्टिकल में से उन्होंने उसमें से प्रतिभाशाली खिलाड़ी चुने, उन खिलाड़ियों को खेलो इंडिया एथलीट बनाया, जिनको 10,000 रुपए आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस और जहां पे ट्रेनिंग करते हैं उनको वित्तीय सहायता करीब 6 लाख की वो भारत सरकार ने दिया। 360 डिग्री सपोर्ट था, ये वो सिस्टम है। अब इसी में से जो खिलाड़ी उन्नति किया वो टॉप्स जैसे सुपर एलीट लेवल पे आ गया। टॉप्स में एलीट खिलाड़ी जो मांगता है जनरली वो मिलता है। अब नए वाले सिस्टम में क्या है, 720 डिग्री सपोर्ट कैसा है, पहले जिन चीजों की चिंता की थी उससे आगे बढ़ गए। हमने देखा कि आईटी सपोर्ट नहीं है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को नहीं है, साई को नहीं है, तो इसमें नए वाले खेलो इंडिया में आईटी सपोर्ट का एक वर्टिकल खड़ा हुआ। सबसे बड़ी समस्या इस देश में है कोच की, कोच कहाँ है और स्तरीय कोच कहाँ है। तो कोच का विकास के लिए एक कोच डेवलपमेंट एंड सपोर्ट स्टाफ डेवलपमेंट का वर्टिकल खड़ा हुआ। तो सिर्फ कोच की बात नहीं है, स्पोर्ट्स साइंस जिसकी मैंने अभी बात की उसका पूरा एक सिस्टम खड़ा होगा, इको सिस्टम खड़ा होगा। उसमें लोग खड़े होंगे, वैज्ञानिक खड़े होंगे, बायो मैकेनिक्स खड़ी होगी, मैसर खड़ा होगा, न्यूट्रिशनिस्ट खड़ा होगा। अब ये पूरा एक सिस्टम जो है बन के आ रहा है। और ऑन टॉप ऑफ दैट खेलो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने, जो एक वर्टिकल है खेलो इंडिया का, उसने पूरे देश में जो अधोसंरचना है उसकी एक समझ लीजिए उसमें क्रांति ला दी है। पूर्व में 300 से भी अधिक अधोसंरचनाएं खड़ी हुई थी, नए वाला जो खेलो इंडिया है इसमें और ज्यादा इसमें सपोर्ट है और त्रिस्तरीय सपोर्ट है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हमने पहले खेलो इंडिया सेंटर की ही बात की जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात की, अब नए वाले में स्कूलों में भी खेलो इंडिया सेंटर होंगे। स्कूल में न बच्चे सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि खेलेंगे भी, और भारत सरकार उसको फंड करेगी ऐसे खिलाड़ियों को। साथ ही साथ और बहुत से कॉलेजेस उनको भी खेलो इंडिया सेंटर या सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना पाएंगे हम लोग। तो ये बहुत बड़ा एक सिस्टम खड़ा हो रहा है। पहले तो मैदान तक नहीं पहुंच पा रहे थे, अब न सिर्फ वो मैदान पे पहुंचेंगे बल्कि अपनी खेल प्रतिभाओं को कंपटीशन और लीग से निखारेंगे, उनकी प्रतिभाओं का सम्मान होगा, टैलेंट स्काउट होंगे, कम्युनिटी कोच होंगे जो उनकी प्रतिभाएं देखेंगे, ग्राम स्तर पे भी देख पाएंगे क्योंकि कम्युनिटी कोच और जो टैलेंट स्काउट है वो ग्राम ग्राम स्तर तक जा सकेंगे। जोनल टैलेंट सर्च कमेटी बनेगी और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट कमेटी तो पहले से थी। तो इस प्रकार से ये पूरा एक इकोसिस्टम खड़ा हो गया है जिसने भारत के खेल जगत को एक क्रांति उसने कर दी है।
1: बिल्कुल क्रांति आई है। और जो खिलाड़ियों के ऊपर मानसिक दबाव हुआ करता था कि खेल के मैदान नहीं है, सुविधाएं नहीं है, वो सारे दबाव उनके मन से हटे हैं। और हमने बहुत सारी गंभीर बातें कर ली हैं और इन गंभीर बातों के बीच अब थोड़ा सा मूड को हल्का किया जाए और हम जानना चाहेंगे कि आपको वो कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, और अगर अभी हम आपको सुनाना चाहें तो वो कौन सा गीत होगा?
0: एक्चुअली मैं बचपन से बहुत सारे गाने सुनता हूँ, अगर आप उनमें से एक सुनने को बोलते हैं तो वो मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे बहुत पुराना गाना याद आ रहा है, किसी की मुस्कुराहटों पे वो निसार। मैं तो कुंदन लाल सहगल इरा से अभी अरिजीत सिंह के इरा तक के गाने सुनता हूँ, तो वही मुझे पहले दिमाग में स्ट्राइक किया।
1: वो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: और इस सुमधुर गीत के बाद फिर लौटते हैं प्रधानमंत्री जी के मन की बात और अपने विषय मैदान से पोडियम तक की तरफ। और राजा, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में पीवी सिंधु की जापान की सफलता का जिक्र किया और वो जीत सचमुच अविस्मरणीय रही, क्योंकि किसी भारतीय खिलाड़ी ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन में ट्रॉफी जीती है। सिंधु की ये जो जीत रही, इसने ट्रॉफी का जो एक लंबे समय का उनका सूखा था, न सिर्फ उसको खत्म किया बल्कि एक उम्मीद भी जगाई है। उनकी इस सफलता से आप कितने प्रभावित हुए हैं?
1: कोई भी खिलाड़ी जब ऐसा प्रदर्शन करता है या करती है, जाहिर सी बात है देश का हर वो व्यक्ति खुश हो जाता है। खास करके पीवी सिंधु जैसे खिलाड़ी की बात करें, क्योंकि आप देखिए उनके पास 5 विश्व चैंपियनशिप के मेडल्स हैं, वो चैंपियन भी रही है, उसके अलावा उनके पास 2 ओलंपिक पदक भी है और बेहतरीन खिलाड़ी रही है, कई सालों से भारत का रिप्रेजेंटेशन करते आई है और 2 साल से उनके पास कुछ था नहीं दिखाने के लिए। सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में, फर्स्ट राउंड में जब हार एक खिलाड़ी के पीछे लगातार पड़ जाती है तो उस खिलाड़ी के अंदर शंका पैदा हो जाती है कि एम आई गुड इनफ, क्या मैं अभी भी अच्छा खिलाड़ी हूँ, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। वो शंका को दूर करने वाली बात हो गई टोक्यो में, और जापान में जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि रही है सिंधु के लिए। शादी के बाद एक महिला खेल सकती है, उन्होंने दिखाया है, टोटल फोकस के साथ दिखाया। हम सबके लिए एक सबक है कि किसी को राइट ऑफ ना करें। शायद उनमें से मैं भी था कि सिंधु पे डाउट होने लग गया कि सिंधु अभी आगे करेगी क्या, सिंधु के बाद कौन होगा, ये सारे सवाल आ गए थे। लेकिन सिंधु ने एक बार फिर अपने और ध्यान को आकर्षित किया है, टेरिफिक परफॉर्मेंस, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, सिंधु एक प्रेरणा है और हमेशा रहेगी
0: जी। और मैंग जी, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि सिंधु से हम लगातार सफलता की उम्मीद करते हैं, एक आदत सी हो गई उनकी सफलता की, उनकी ट्रॉफियों की। पिछले कुछ वर्षों में अगर हम खासतौर पर पिछले 2 साल की बात करें तो वो पीक पर अपने नजर नहीं आ रही।

0: तो ऐसे में जापान ओपन की ये जो कामयाबी है उनकी वापसी की तरफ इशारा करती है, या फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि देश के लिए वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे चुके?
1: नहीं, बिल्कुल मैं राजा राम जी की बात से सहमत हूँ, इसको वापसी ही मानेंगे हम लोग तो बिल्कुल मानते हैं। और मैं आपको कुछ अंदरूनी जैसी बातें बता सकूं तो सिंधु बहुत फोकस्ड प्लेयर है
0: जी।
1: और सिंधु की जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो लाजवाब है। मानसिक क्षमताओं में भी उसके अंदर बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है, उसका फोकस बहुत बड़ा है। फोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हमारा बेंगलुरु केंद्र है, रीजनल सेंटर, वहां के जो स्पोर्ट्स साइंस सेटअप है, मैंने एक बार वहां पे देखा था, सिंधु आई थी, उनका फोकस एकदम क्लियर है कि ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में, इसका क्या है। उन्होंने बकायदा चेकअप कराया, उसका एक सोल्यूशन निकलवाया और उस चीज पे वर्क किया। तो अगर ये खिलाड़ी इतने अनुभवी होने के बाद ये इस स्तर पे स्पोर्ट्स साइंस के लेवल पे चीजें सोच रहे हैं तो ये उनका फोकस, उनका एक ये दिखाता है कि वो उसमें पूरी तरह से रमे हुए हैं। मुझे लगता है कि सिंधु में अभी मतलब एलिट 28 तक मुझे वो काफी सक्रिय और काफी सक्सेसफुल दिखाई देती हैं।
0: जी। और राजा रमन जी, साल 2028 ओलंपिक ईयर है, ऐसे में 31 साल की दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट सिंधु के लिए टूर्नामेंट को चूज करना और अगले 2 सालों तक फिटनेस को बनाए रखना कितना जरूरी है?
2: बहुत जरूरी है धर्मेंद्र, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि प्लेयर के सामने चुनौती है, लगातार टूर्नामेंट खेलने पड़ते हैं रैंकिंग पॉइंट्स जमाने के लिए और रैंकिंग बना के रखने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि ओलंपिक गेम्स में क्वालिफिकेशन रैंकिंग के बदौलत होती है। अगर आप टॉप 16 में है तो आपका गारंटीड स्पॉट बन जाता है, उसके बाहर होते हैं तो मुश्किल होता है आपका क्वालिफिकेशन, क्योंकि कम खिलाड़ियों को बुलाते हैं, कुछ कोटा देना पड़ता है, या तो फिर आप एशियन गेम्स जीत के दिखा दें या फिर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बने या फिर टॉप रैंकिंग में बने रहे। तो सिंधु के सामने एक चुनौती रहेगी कि अपना रैंकिंग बना के रखना होगा और इसके लिए लगातार खेलते रहना पड़ेगा उन्हें, और दिस इज अ चैलेंज, क्योंकि एक तो उम्र उनका बढ़ता जा रहा है लेकिन उनके अंदर जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में चैनलाइज करके सिंधु इज फेसिंग द चैलेंजेस। और मुझे पूरा विश्वास है कि लॉस एंजलिस 2028 तक वो रैंकिंग भी बना के रखेगी और फिर वहां पे बहुत बेहतरीन प्रदर्शन भी करेगी।
0: बैडमिंटन से जो है एक और सवाल है कि भारत में जो है बैडमिंटन की बेहद मजबूत परंपरा रही है, उस परंपरा को खासकर महिला बैडमिंटन के जरिए साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ने एक बड़ा ऊंचा मकान दिया है, उस स्तर को बनाए रखने के लिए बैडमिंटन की नई पौध मयंक जी कितनी दमदार दिखाई देती है?
1: बैडमिंटन में बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं। आपने तो केवल महिला खिलाड़ियों की बात की पर मुझे लगता है कि पुरुष खिलाड़ी भी इसमें कम नहीं है। बहुत सारे अभी खिलाड़ी अंडर 18 खालिया एक टूर्नामेंट हुआ है, उस टूर्नामेंट में उस अंडर 18 प्लेयर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बॉडीली भी वो बहुत अच्छा एडवांटेजियस पोजिशन में है। इसके अलावा जो आपने बात की कि महिला खिलाड़ी विशेष रूप से ज्यादा उनके अंदर संभावना है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। मैंने जितना इन लोगों का प्रदर्शन देखा है, न सिर्फ प्रदर्शन की बात है, जिस प्रकार से अपने खेल को ये अप्रोच करती हैं, जिस प्रकार से अपने खेल को सीरियसली लेती है और जिस प्रकार से इनका फोकस है, ये सभी खिलाड़ी, मेरा काडर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के ऐसे खिलाड़ियों को देख करके, अभी गुवाहाटी कुछ दिन पहले मैं गया था जहाँ पे एक बहुत अच्छी एकेडमी है और कोरियन रशियन और मलेशियन कोच वहाँ पे हैं, जिनके भाई जो है BAI बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया वो वहाँ पे ट्रेनिंग कराती है अपने प्लेयर्स को। तो इनका फोकस देख कर, उनका प्रोफेशनलिज्म देख करके और उनका एम्बिशन देख करके मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आगे आने वाले समय में मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि एशियन गेम्स में कुछ सरप्राइज भी हो जाए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाला जो ओलंपिक है उसमें भी कुछ सरप्राइज हो जाए।
2: मैं आपको बता दूं
0: जी,
2: उन्नति हुडा जैसे प्लेयर उभर कर आई है, अस्मिता चलिहा जैसे प्लेयर उभर कर आई है, और न सिर्फ सिंधु और साइना नेहवाल की बात कर सकते हैं हम, ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोन्नप्पा की भी बात कर सकते हैं, और गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली, ये भी दुनिया में अच्छा प्रदर्शन देते आए हैं। खिलाड़ी को चोट लगता है, कुछ खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं, लेकिन भारत का बैडमिंटन बहुत अच्छे हेल्थ में है। मेरा ये मानना है कि हमें हमेशा डाउट होता है कि सिंधु के बाद कौन, लेकिन ये युवा खिलाड़ी आई है, ये जवाब दे रही है हम सबको।
1: मैं इसमें चिराग और उसको भी हम लोग राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, सात्विक और चिराग को आप बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं।
2: लक्ष्य सेन खेल ही रहा है अच्छे,
1: लक्ष्य सेन भी अच्छा खेल रहा है, और अभी भले उसकी कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि उसने, लेकिन स्टिल इन द फ्रे एंड चिराग और ये लोग तो बहुत अच्छे उसमें हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। एशियन गेम्स में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, हम लोग बिल्कुल इसका एक मुजाहिरा जरूर देखेंगे वहाँ।
0: बिल्कुल, अब आगे बढ़ने से पहले एक गीत सुनते हैं राजा, अब आप बताइए कि आपकी पसंद का वो कौन सा गीत सुना जाए।
2: मयंक जी ने मुकेश जी का गाना चुना था, मैं भी मुकेश जी का ही गाना

0: दोस्तों, इस गीत के बाद कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आपका फिर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के मन की बात में खेलों के बारे में की गई चर्चा की। हमारे आज के दो मेहमान हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के उप महानिदेशक और आईपीएस मयंक श्रीवास्तव जी और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। राजा, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में लॉर्ड्स मैदान में खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारतीय टीम की शानदार सफलता का जिक्र किया था। इसे उन्होंने भारतीय पुरुष टीम की 1983 की विश्व कप की विजय से जोड़ा। ये जुड़ाव स्वाभाविक भी है क्योंकि उस कामयाबी के बाद हमने दुनिया को अपनी क्रिकेट महाशक्ति होने का एहसास कराया था। महिला टीम की टेस्ट क्रिकेट में ये जीत उसे इस लॉन्ग फॉर्मेट का सुपर बनाने की दिशा में कितना मदद करेगी?
1: बहुत ज्यादा। मुझे ये लगता है कि भारत कई सालों से महिला क्रिकेट की अगर बात करें तो टेस्ट मैचेस की ओर ध्यान नहीं दिया था और लॉर्ड्स में जाकर टेस्ट मैच खेलना और पहले ही मैच में मेजबान इंग्लैंड को पराजित करना, ये बहुत बड़ी बात है और दिखाता है कि हमारी महिला टीम के अंदर जो जोश है, जो ऊर्जा है, जो बिलीफ है, जो एक स्वाभिमान वाली बात है, ये बहुत अच्छी बात है देखने को मिला है। वहां पे शतक भी जड़े हैं हमारे खिलाड़ी, 5 विकेट्स इन एन इनिंग्स वाली भी बात हुई है। अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहला ही मैच जीतना, हालांकि कंपैरिजन गलत होगा, लेकिन पुरुष टीम की अगर बात करें कई साल लग गए भारतीय पुरुष टीम को टेस्ट मैच जीतने में लॉर्ड्स में, और महिलाओं ने वो कर दिखाया कि हम इंग्लैंड जाएंगे और इंग्लैंड को हराएंगे।
0: राजा, वनडे विश्व कप जीतने और लॉर्ड्स में ऐतिहासिक टेस्ट जीत के बाद महिला टीम की सोच और अप्रोच में कितना बदलाव आया है और कितना बदलाव आना चाहिए?
1: मुझे लगता है कि भारतीय महिला टीम में सोच और अप्रोच दोनों सही थे, लेकिन अब विश्वास बढ़ जाएगा कि हम दूसरे देश के मैदान में, वो भी सर्वश्रेष्ठ मैदानों में से माना जाता है, इट इज नोन एज द होलीएस्ट ऑफ क्रिकेट ग्राउंड, वहां पे जाके जीतना पहले ही मैच में, टीम का हौसला बुलंद हो जाता है। पहले से बुलंद है, विश्व चैंपियन रही भारतीय टीम, लेकिन इंग्लैंड में जाकर जीतना हम सबके लिए कहीं ना कहीं एक स्पेशल मीनिंग आ जाता है कि ब्रिटेन में जाके इंग्लैंड को हराना, देयर इज अ स्पेशलिटी टू इट। और मुझे लगता है कि महिला टीम ये कर दिखाई है और फिर उनके अंदर जो हौसला अफजाई चाहिए था उन्हें खुद उन्होंने ढूंढ के निकाला है और फिर सबको दे भी दिया है।
0: और मयंक जी, प्रधानमंत्री जी ने खेल के मैदान पर नारी शक्ति का भी अपनी बातों में जिक्र किया। ये स्वाभाविक भी है क्योंकि नारी शक्ति की वजह से ही हम ग्लासगो में 13 गोल्ड मेडल जीत कर मेडल टैली में चौथे स्थान पर पहुंच सके और उसमें 8 गोल्ड मेडल महिलाओं के थे। यानी हम कह सकते हैं कि हम खेल महाशक्ति बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हमारी नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है।
2: ये बात न सिर्फ मौजूद है, रेलेवेंट है, बल्कि ये बात बहुत एक तरह से कह लें कि ये टैक्ट फुलनेस की भी बात है, ये एक रणनीति की भी बात है। मैं ऐसे ही एक बार अध्ययन कर रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, जो कि ओलंपिक खेलों में पहले दूसरे उस पे रहते हैं, इनका क्या है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इनके स्वर्ण पदकों का, और मैंने पाया कि इनके अधिकतर जो पदक हैं वो महिला खिलाड़ी जीत रही हैं। और कुछ ऐसा अभी भी पूरे विश्व में जो वातावरण है, खेल परिदृश्य जो है, मैं समझता हूं कि भारतीय महिला खिलाड़ियों का जो अभी पूरी क्षमता का निर्माण नहीं हुआ है, अब ऑब्वियसली उसमें लग गए हैं और इसमें बहुत स्कोप है। हमने यदि महिला खिलाड़ियों को सशक्त कर दिया और उनको अच्छी ट्रेनिंग दे दी तो निश्चित रूप से हमारा वो जो लक्ष्य है कि हम 2036 तक पहले 10 खेल महाशक्ति होंगे, वो बिल्कुल संभव है। और आपने जो उदाहरण दिया, निश्चित रूप से वो एक फैक्ट तो है ही है कि 13 में से 8 मेडल जो है वो महिला खिलाड़ियों ने जीते हैं। आप अगर विश्लेषण कीजिए पिछले कुछ सालों में रेसलिंग में, जो कि हमारी वैसे भी ताकत रही है, और हमारा पहला जो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ओलंपिक में वो भी रेसलिंग में मिला था, पुरुष खिलाड़ियों ने दिया था, पर अगर आप अभी आप देखें तो महिला रेसलर्स जो हैं उनके अंदर ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं, महिला बॉक्सर्स उनके अंदर ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं। सबसे बड़ा सुखद क्षण मुझे लगा इस कॉमनवेल्थ में वो जूडो में खिलाड़ियों का आगे आना। जूडो एक ऐसा खेल है कि जिसमें हम लोग संभवतः पहली बार ऐसे मेडल जीते हैं और उसमें भी महिला खिलाड़ियों का ही प्रमुखता रही है, और ये बहुत ही अच्छा एक सुखद संकेत है आगे आने वाले समय के लिए। तो निश्चित रूप से मैं बिल्कुल सहमत हूं और ये मेरा मानना है कि महिला खिलाड़ी न सिर्फ अभी योगदान दे रही हैं बल्कि आगे भी हमारे खेल परिदृश्य में बहुत अच्छा योगदान करने वाली हैं।
0: और राजा, खेलों को आम जन से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी छोटी जगहों और छोटी घटनाओं का भी जिक्र करते रहते हैं, जैसा कि उन्होंने केरलम के एर्नाकुलम के स्कूल के संस्कृत शिक्षक की फुटबॉल पहल का जिक्र किया। प्रधानमंत्री जी के ये प्रेरक उदाहरण आम लोगों के मन में खेलों के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए कितने अहम होते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि कुछ ऐसे अध्यापक हैं जो खेल की ओर ध्यान देते हैं। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना है 2020 का और जो अभी स्पोर्ट्स का पॉलिसी बना है, इसमें खेल और पढ़ाई दोनों को मिलाने का, मिश्रण बनाने का एक प्लान है। तब जाके भारत का खेल आगे बढ़ेगा। और उनका ध्यान देखिए एक अध्यापक पे गई है जहाँ पे वो संस्कृत को यूज करते हुए खिलाड़ियों को फुटबॉल खेलने में प्रोत्साहित करती है। हालांकि केरला में फुटबॉल के लिए कमी नहीं होती है, बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है। लेकिन एक और महिला है जो साड़ी पहनकर कोचिंग करती है। फुटबॉल की ही बात करें अगर, हालांकि कईयों को पता नहीं है ये, अगर हम विश्व में रैंकिंग की बात करें, हमारे महिला टीम, फुटबॉल की टीम की बात कर रहा हूं मैं, उनका बहुत बेहतर रैंकिंग है व्हेन कंपेयर टू मेन। और हम हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं इस बात को, बहुत बेहतरीन प्लेयर्स आए हैं। और जाहिर सी बात है कि एक अध्यापक अगर संस्कृत को लेके खिलाड़ियों को संस्कृत और खेल दोनों को मिला के एक अच्छा मैसेज, और ये बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंची है और ही हैज ओनली एलोबरेटेड इट, और ये अच्छी बात है। और भी अध्यापक में एक जोश और ऊर्जा पैदा हो जाएगा कि हम भी कुछ ऐसा करें ताकि उनकी नजर हम पे भी पड़े।
0: जी, सवालों और जवाबों का ये सिलसिला तो जारी रहेगा। फिलहाल बारी है एक और गीत की। मयंक जी, अपनी पसंद का एक और गीत बताइए।
2: इस बार थोड़ा सा नया गीत बताता हूँ। दिल समझ जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू।

और इस गीत के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी की बात पर लौटते हैं, जो देश में खेलों के विकास और भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए बेहद गंभीर हैं। इसी का नतीजा है कि अहमदाबाद में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होने जा रहा है, साथ ही

0: 36 में हमारी ओलंपिक मेजबानी की भी योजना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ संशोधित खेलो इंडिया योजना को मंजूरी दी है। मैंग जी, इस संशोधित खेलो इंडिया योजना का प्राइमरी लॉन्ग टर्म गोल क्या है और जो पैसों का आवंटन है वो किस तरह से किया गया है?
1: संभवतः हमारी किसी बात में ये जिक्र आया था कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि 2036 तक हम खेलों में प्रथम 10 स्थानों पर रहने वाले देश बन सके, 2047 तक हम प्रथम 5 देशों में से एक हों, ऐसा एक बृहद लक्ष्य है। अब उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जैसा मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा खेलो इंडिया जो योजना है उसके बारे में बताया था कि कैसे वो 720 डिग्री सपोर्ट देती है और 360 डिग्री सपोर्ट के आगे वो कोच की भी बात करती है, स्पोर्ट्स साइंस की भी बात करती है, आईटी सपोर्ट की भी बात करती है, हर जिले में और स्कूलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल की बात करती है। इसके अलावा जो राज्य के साथ भागीदारी में अधोसंरचना की बात करती है, जिसमें केंद्र सरकार 60% योगदान देगी और राज्य सरकारें 40% और नॉर्थ ईस्ट में 90% तक का योगदान भारत सरकार देगी। इसी प्रकार से एक ट्रेनिंग इकोसिस्टम खड़ा किया गया, जिसमें साई के जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अंग है, एनसीओई, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, साई ट्रेनिंग सेंटर्स, इन सब का भी एक पूरा एक वो चलेगा। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं पहले बात किया था कि आईएससी ओकेआईसी वो तो रहेंगी। तो एक पूरा एक अधोसंरचना, पूरा एक सपोर्ट सिस्टम हर क्षेत्र में इसमें आ गया। जहां तक पैसों के आवंटन का प्रश्न आपने किया है, तो पैसों का आवंटन अभी इसको बोल सकते हैं कि अभी फ्लूइड है और आवश्यकता अनुसार इसमें किया जाएगा, जो एक तरह से कह लें कि एलोकेशन इसमें आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। निश्चित रूप से जो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी एलिमेंट है, उनमें चूंकि उसका संगठन ऐसा होता है कि उसमें पैसा ज्यादा लगता है, तो निश्चित रूप से वहां पे ज्यादा पैसा लगेगा। लेकिन जो लक्ष्य है वो है ट्रेनिंग में खर्चा करने का, एथलीट के ऊपर खर्चा करने का और एकेडमिक या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बनाना है उसमें खर्चा करने का।
0: जी, तो राजा रमन जी, खेलो इंडिया के नए स्वरूप के तहत खिलाड़ियों को मिलने वाले साइंटिफिक ट्रेनिंग में बदलाव की कितनी आवश्यकता है, जैसे कि चर्चा कर रहे थे कि ट्रेनिंग भी एक फोकस विषय है इस संशोधित खेलो इंडिया का।
2: धर्मेंद्र, जितना भी मैं खेला हूं और देखा हूं, करीब 50 साल तो हो गए होंगे इन सबको, स्पोर्ट्स साइंस का बहुत जरूरी होता है। अभी तक बहुत कम यूज हुआ है स्पोर्ट्स साइंस, हम सिर्फ एलीट लेवल पे यूज करते आए हैं स्पोर्ट्स साइंस को। मयंक जी ने कोचिंग की बात की, कोचेस हमारे पास कम है जो विश्व स्तर का कोचिंग कर सके, जो स्टैंडर्ड कोचिंग करें, ताकि जो खिलाड़ी मैदान में सीखता है, बेसिक्स जहां पे उसके पढ़ते हैं, फंडामेंटल जहां पे आते हैं, अगर वहां से उठना है तो वो फंडामेंटल सही पढ़े। फाउंडेशन अगर सही गिरता है, नींव अगर सही पड़ता है, तो आगे चल के वो स्टार बन सकता है। धर्मेंद्र, आप भी सुन चुके होंगे, मैं भी सुनता हूँ, जो हमारे अंतरराष्ट्रीय कोचेस आते हैं वो कहते हैं कि आपका टेक्निक ही गलत है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिखाना पड़ता है कि टेक्निक कैसे सुधारा जाए। अगर हम इस पे फोकस करते हैं, और अब फोकस आ रहा है, कोचिंग और स्पोर्ट्स साइंस दोनों में फोकस आ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो खेलो इंडिया के ट्रेनिंग फैसिलिटीज होंगे हर जिले में होगा और हर स्कूल में शायद एक अच्छा सा कोच होगा जो स्पोर्ट्स साइंस को समझ सके। जब तक आप इसको जोड़ नहीं लेते हैं, आपके खिलाड़ियों को भी समझ नहीं आता है। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से झिझकते हैं, कि वो कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास हम क्यों जाएं, हमें कोई मनोवैज्ञानिक बीमारी तो नहीं है। ये सब बदल रहा है और ये नया देश देखने को मिल रहा है, हमारे खिलाड़ी फियरलेस होते जा रहे हैं, उनके अंदर जो डर था वो दूर हो रहा है और वो चाहते हैं कि दुनिया को जाके कॉन्कर कर कर आए और फिर अपने घर में राज करें। दे आर सेलिब्रेटेड और हम क्यों ना पूजे उनको। वो ऐसे इंसान है जो विदेश में भी हमारे झंडा को लहरा के आते हैं। बहुत कम लोग कर सकते हैं ये काम और खिलाड़ी ही करते हैं, लगातार करते हैं। क्या कहूं, राष्ट्रगान जब बजता है विद द फ्लैग गोइंग अप, चाहे वो ओलंपिक्स हो या एशियन गेम्स हो, रोंगटे खड़े होते हैं और ये खिलाड़ी ही कर सकता है। अगर 20 मेडल चाहिए, 30 मेडल चाहिए, हमें चाहिए कि ग्रास रूट में स्पोर्ट्स साइंस लाए। और ये खेलो इंडिया मिशन का एक बहुत अच्छा फोकस है कि कोचिंग भी सही हो और फिर स्पोर्ट्स साइंस भी सही हो।
0: मैन जी, इस संशोधित योजना में प्रतिभाशाली एथलीटों को मिलने वाली स्कॉलरशिप और वित्तीय सहायता के लिए क्या कुछ नए नियम बनाए गए हैं?
1: जहां तक नियमों का सवाल है, नियम तो लगभग वही रहेंगे। नियमों से परे जो चीज हुई है, जो क्रांति इसमें हुई है, पहले हम मात्र 3,000 खिलाड़ियों को खेलो इंडिया एथलीट बनाते थे और उनको आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस और जहां पे वो लोग प्रैक्टिस करते हैं उन संस्थानों को वित्तीय सहायता देते थे। अब ये संख्या बढ़ के 30 हजार हो जाएगी। 30,000 लोगों को वित्तीय सहायता मिलेगी, आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस मिलेगा। वो जिन संस्थानों में अभ्यास करते हैं उन संस्थानों को इन खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में और अनुकूल सहायता देने के लिए वो जो वित्तीय सहायता थी वो मिला करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। 8 गुना वृद्धि हुई है टोटल फाइनेंशियल एलोकेशन में और 10 गुना वृद्धि हुई है प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बकेट में। 10 गुना अधिक खिलाड़ियों को डायरेक्ट सपोर्ट हम बोल सकते हैं कि मिला करेगा।
0: स्पॉन्सरशिप बड़ी समस्या हुआ करती थी, लेकिन जैसा कि मयंक जी ने बताया कि जो स्कॉलरशिप है उसके लिए खिलाड़ियों की संख्या बढ़ा दी गई है, इसका कितना पॉजिटिव असर खेलों पर खिलाड़ियों पर पड़ेगा?
2: बहुत ज्यादा पड़ेगा और एक विश्वास बढ़ जाएगा खिलाड़ी के अंदर। और जो हमेशा डाउट रहता है कि अगर मुझे चोट लग गया, मैं बीमार हो गया या खेल से बाहर हो गया तो मेरा क्या होगा, इस सवाल का जवाब अब शायद मिलने लगा है खिलाड़ी को। वो निडर होके खेलने लगे हैं धर्मेंद्र। और मुझे लगता है कि जो खेलो इंडिया का स्कॉलरशिप स्कीम है, अगर 3,000 से बढ़कर 30,000 खिलाड़ी तक जा रहा है
0: जी,
2: तो आपका जो बेस है वो और ब्रॉड होता जा रहा है। मुझे लगता है कि क्रीम और बेहतर होगा आगे चल के। 2036 की ओर ध्यान है, आज शुरू करना चाहिए और शुरू हो गया है। अच्छे नतीजे आएंगे, वी विल सी वेरी गुड रिजल्ट। और मेरा ये मानना है कि हर वो एंगल कवर्ड है, पॉजिटिविटी भरा हुआ है देश के अंदर और खिलाड़ियों के अंदर और भी ज्यादा हुआ है। मेरा ये मानना है कि अगर उसको सही दिशा दे, सही चैनलाइज करे तो हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खेल के देशों में हम एक जरूर बन सकते हैं।
0: और मयंक जी, कॉमनवेल्थ गेम्स में तो हमने खेलो इंडिया स्कीम से निकले खिलाड़ियों का जलवा देखा, ढेर सारे मेडल खेलो इंडिया के खिलाड़ियों की तरफ से आए, जो प्रदर्शन रहा है अद्भुत रहा है, क्या कहेंगे?
1: बिल्कुल, वो जो आपने शुरू में एक स्लोगन कहा था, मैदान से पोडियम तक का माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो दिया गया था आपने उसे दोहराया, तो ये खेलो इंडिया इस कॉमनवेल्थ गेम में आप बिल्कुल उसको फलीभूत होते हुए देख पाएंगे। 122 खिलाड़ी थे, उनमें से 70 खिलाड़ी खेलो इंडिया से किसी न किसी रूप में संबद्ध रहे हैं। और जो मेडल विनर्स थे, 39 मेडल्स हमारे आए, 39 मेडल्स में से 16 मेडल्स, 16 पदक
0: जी,
1: वो खेलो इंडिया से संबद्ध खिलाड़ियों के
0: जी।
1: तो आप देख सकते हैं कि वो जो मैदान से पोडियम तक यहाँ पे एकदम साकार हो रहा है, एकदम फलीभूत हो रहा है
0: जी। और राजा, कहते हैं कि खेल प्रतिभाएं वो गांवों में भी बहुत छुपी हुई हैं और उनके पहचान की आवश्यकता है, वहां से बहुत सारे ऐसे एथलीट, ऐसे खिलाड़ी निकलकर सामने भी आते हैं जिन्होंने देश के लिए ढेर सारे मेडल जीते हैं। अभी इस दिशा में खेलो इंडिया के तहत और कितना काम करने की आवश्यकता है?
2: धर्मेंद्र, मेरा यह मानना है कि भारत के जो मेडल्स अभी तक आए हैं वो हिंटरलैंड से ही आए हैं। ज्यादातर आप खेलों में देखें तो वो खिलाड़ी रूरल एरिया से है, बैकवर्ड एरिया से है, उनके अंदर एक भूख है जो शायद शहरी खिलाड़ियों में कम है। मैं नहीं कह रहा कि शहरी खिलाड़ी कम है, किसी स्तर पे भी कम है, लेकिन भूख उनके अंदर ज्यादा दिखता है। और इनको खोजने में जो खेलो इंडिया का टैलेंट आइडेंटिफिकेशन स्कीम है ये अभी मदद करेगा। मेरा ये मानना है कि खेलो इंडिया के जो अधिकारी है उनको समझ आया होगा, 2 साल पहले उन्होंने एक स्कीम चलाया था, उसमें से सीख मिली होगी। कीर्ति स्कीम था, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन स्कीम, उसमें से कुछ सीख मिला होगा। और आगे जो करना है हमें टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में, इसमें सुधार लाकर अच्छे टैलेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। जो 30,000 खिलाड़ियों की बात हो रही है खेलो इंडिया स्कॉलर्स की, ये हमारा भविष्य होंगे। और मेरा ये मानना है कि ये सारे अच्छे खिलाड़ी होंगे और बेहतरीन रिजल्ट्स भारत के लिए लेकर आएंगे आगे चलकर। ये कोई भी देश में ये होता है धर्मेंद्र, के आज अगर आपके पास 30,000 खिलाड़ी हैं, वो सारे 30,000 वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेंगे, उनमें से छाट कर आपको 30 वर्ल्ड क्लास एथलीट मिलेंगे। अगर आपके पास बेस 3,000 का ही है तो 3 खिलाड़ी आपको मिलते हैं। अच्छी बात है कि बेस हम बढ़ा रहे हैं और वहां से हमारे खिलाड़ी उभर कर आएंगे और विश्व स्तर पर अच्छे चैंपियंस बनेंगे और फिर गर्व से हमारा दिल धड़कने लगेगा।
0: और मैं जी, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स जो है देश में, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसके क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स अभी तक आए हैं और भविष्य में क्या योजनाएं हैं?
1: टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो है भारत सरकार ने इस उद्देश्य से शुरू की थी कि जो हमारे एलीट एथलीट हैं, एलीट एथलीट का आशय उन एथलीट से है जिनको कि हम ये मान करके चलते हैं कि इनके अंदर इतनी प्रतिभा है और उनकी स्किल लेवल इतनी अच्छी है कि ओलंपिक और एशियन गेम्स इस तरह के जो टॉप नॉच जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें ये भारत को पदक दिलाने में सक्षम है, तो उनको इस तरह की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, कोई फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल न फेस करना पड़े, कोई अन्य गतिरोध न फेस करना पड़े, ट्रेनिंग का हो, चाहे जगह का हो ट्रेनिंग के लिए, चाहे ट्रेनिंग के लिए सामानों का हो या जो रिकवरी का

0: चिकित्सा है ना, मतलब उनके जो मैसर्स होते हैं, उनके जो फिजियो होते हैं, इन सभी की दृष्टि से उनको कोई ऑब्स्टकल का सामना न करना पड़े और कोई उनके पास कमी न रह जाए, इसलिए टॉप्स जो है स्कीम लाई गई थी। और इसमें ऐसे एथलीटों का चयन किया जाता है, एक समिति होती है जो साई में कार्य करती है, उस समिति में रिनाउंड प्लेयर्स हैं, रिनाउंड कोचेस हैं, हमारे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के भी रिनाउंड जो पुराने लोग हैं वो लोग हैं, और ऑफकोर्स अधिकारी ही हैं। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सीईओ टॉप्स एक अधिकारी है जो कि वर्तमान में कर्नल जोहल हैं, जो स्वयं भी ओलंपियन रह चुके हैं। तो ये अधिकारी जो है उनके अधीन ये समिति उनका निर्धारण करती है, उनके पैमाना बना होता है कि किस प्रकार के लोग इसमें टॉप स्कोर एथलीट बनेंगे। टॉप स्कोर एथलीट को ज्यादा स्कॉलरशिप बोल लें, अलाउंस बोल लें, वो मिलता है। एक टॉप्स डेवलपमेंट है जिनको हम दूसरी रंग मान सकते हैं कि ये कोर से तुरंत ही कोर बन सकते हैं, इनके अंदर भी मेडल क्षमताएं हैं, तो उनको थोड़ा सा कम पैसा मिलता है। और जो बाकी सुविधाएं जैसे मैंने आपको बताया, जितनी चीजें स्पोर्ट्स साइंस हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे उनकी रिकवरी के हिस्से हो, चाहे उनके स्पोर्ट्स के सामान हो, इत्यादि इत्यादि। उदाहरण के लिए नीरज चोपड़ा जैसे, तो साउथ अफ्रीका में जो उनकी ट्रेनिंग थी उसकी फंडिंग टॉप्स के द्वारा ही की गई थी। तो इस प्रकार से एलीट एथलीट को सहायता देने का एक प्रयास टॉप्स के माध्यम से होता है। और आप देख रहे होंगे कि एलीट एथलीट के हिसाब की ही चीजें उनको प्रदाय की जा रही है। जैसे नीरज चोपड़ा ने कहा था कि साउथ अफ्रीका में वो प्रैक्टिस कर सके, तो वो सुविधा उनको टॉप्स के माध्यम से प्रदान की गई थी।
1: मयंक जी ने नीरज चोपड़ा की बात की, मैं मीराबाई चानू की बात करूंगा आपसे। मीराबाई चानू को चोट लग गया था, बैक में प्रॉब्लम था। मैं 2021 ओलंपिक गेम जो 20 में होने थे लेकिन 21 में हुआ है, उस गेम्स की बात कर रहा हूँ। मीराबाई चानू को वहां पे मेडल मिला था, हम सब जानते हैं। लेकिन 3 महीने पहले मीराबाई चानू को चोट लगी थी और डाउट्स हो गए थे कि इनका क्या होगा। टॉप्स के सपोर्ट से वो गई अमेरिका, सेंट लुइस। वहां पे स्कॉट यूनिवर्सिटी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोफेसर है जिन्होंने उनका इलाज किया और उनका स्क्वाट लिफ्टिंग भी इम्प्रूव कर दिया और तब जाके ओलंपिक में मेडल मिला है। कई सारी बातें टॉप्स की जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है इसकी हमारे सामने आती नहीं है, लेकिन जरूरी है कि जब खिलाड़ी को मदद की जरूरत पड़ती है, जैसे मीराबाई चानू को ऐन वक्त में पड़ गई थी और किसी का भी क्लियरेंस का टाइम नहीं वेस्ट हुआ है। एक टाइम था जब मीराबाई चानू चिट्ठी लिखती थी 3 महीने वेट करो, फिर उसके बाद क्लियरेंस हो ना हो पता नहीं, तब तक आपके पीठ का क्या हाल हो रहा है पता ही नहीं। लेकिन ये मेडल अगर किसी को जाता है, हालांकि मीराबाई चानू के हुनर को जाता है, उनके कोच को जाता है, लेकिन अगर कहीं क्रेडिट जाना पड़ेगा किसी को तो वो टॉप्स को जाता है।
2: और राजा, इतनी सारी बातें हमने कर ली, सुना आप गाना भी बहुत बढ़िया गाते हैं।
1: नहीं, गाता तो नहीं हूँ और मैं श्रोता को डराना नहीं चाहता हूँ धर्मेंद्र, लेकिन खेल का जो मुहिम है, 1958 में एक ऐसा खिलाड़ी भारत के अंदर एक जोश पैदा कर दी, मैं मिल्खा सिंह की बात कर रहा हूँ। आज की तारीख में जितना उनका तारीफ की जाए कम, वो फौजी रहे, बड़े मुश्किल परिस्थिति से उभर कर आए और फिर चल के कॉमनवेल्थ का मेडल जीता उन्होंने, क्योंकि हम कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं, और रोम ओलंपिक्स में 4th प्लेस फिनिश किया उन्होंने। उनके एक बायोपिक बना था भाग मिल्खा भाग, उसमें एक बहुत बेहतरीन गाना है जो आज भी हम सबको प्रेरित करेगा, हम सबको दिखाएगा कि आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छे है।
2: जी, वो कौन सा गाना है जो सुनना चाहते हैं?
1: भाग मिल्खा भाग।

0: तो ये गीत भी हमने सुन लिया। सच कहें तो नए भारत में खेलों के मैदान पर सफलता का सिलसिला जारी है और ये दौर लगातार मजबूती से आगे बढ़ रहा है। खेलों के मैदान से पोडियम तक पहुंचने के लिए नई बुनियाद खड़ी की जा रही है, कामयाबी की नई कहानी लिखी जा रही है। खेल को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए हमने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी बहुत सारे कदम आगे बढ़ाने हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच में परिवर्तन लाएं, अपने बच्चों को भी खेलों के लिए प्रोत्साहित करें और प्रेरित करें। मैदान मार रहे अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने में कोई कसर न छोड़ें, तभी मैदान से पोडियम तक पहुंचने का हमारा ये महाअभियान पूरा होगा। तो मयंक श्रीवास्तव जी, खेलों के क्षेत्र में भारत सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण की तरफ से किए जा रहे प्रयास के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू
0: जी। राजारमन जी, खेलों में भारत के वर्तमान और भविष्य पर इतनी अच्छी बातचीत के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच धर्मेंद्र।
0: तो अब कार्यक्रम के संयोजक प्रमोद कुमार वत्स और प्रस्तुतकर्ता शहनवाज खान के साथ मैं धर्मेंद्र मणि राजेश कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सबसे लेता हूँ अनुमति। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: Good afternoon. The news headlines at the top of this hour. Prime Minister...
1: भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का एक मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, दवा नल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं।

0: इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो वित्त अधिनियम 2026 योजना के अध्याय 4 में शामिल है। ये योजना करदाता को तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। 15 सितंबर तक ये खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, झारखंड, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिल्ली केन्द्रबाट समाचारको प्रसारणपछि सबै आदरणीय श्रोताहरूलाई स्वागत जनाउन चाहन्छौ आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रमा। र श्रोताहरूले हाम्रो कार्यक्रमहरू आकाशवाणी दार्जिलिङ एफएम 100.2 MHz र प्रसार भारतीको वेब्स ओटिटी प्लेटफर्म अनि न्युज अन एआईआर एपमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ।

0: intelligence has dismantled a major network involved in importing Southeast Asian areca nuts into India by falsely declaring them as being of Bangladeshi origin and fraudulently availing concessional duty benefits under the South Asian Free Trade Area. And now before we end the bulletin, the headlines once again. NTA releases provisional answer keys for 84 subjects of UGC NET 2026. Objections window to remain open till Tuesday. Students protesting against JPSC-JSSC exam irregularities in Jharkhand demand resignation of Chief Minister Hemant Soren. Union Home Minister Amit Shah unveils statue of Atal Bihari Vajpayee in Rajasthan as nation pays homage on former Prime Minister's death anniversary. Fresh low pressure over Northwest Bay of Bengal intensifies flood threat in northern Odisha. In badminton, India set to host BWF World Championships beginning tomorrow. And in cricket, Bangladesh secure historic first test win in Australia. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी उड़ीसा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत, ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से दी मात। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। एक रिपोर्ट।
2: छात्र आधिकारिक यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं। प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख है। एनटीए ने बताया कि शेष 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। एनटीए ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीनों विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महवीर रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने ये बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान

0: अपन में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही।
1: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सबके बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
0: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
2: भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही, संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया।
3: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
0: भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हरियाणा में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये अभियान इस महीने की 9 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
4: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान

0: के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ओणम के औपचारिक समारोह आज अथम के साथ शुरू हो गए हैं और पूरे केरल में मनाए जा रहे हैं। अथम की खास पहचान अथ पुक्कलम है, जिसमें घरों में रंग बिरंगे फूलों से कालीन सजाए जाते हैं। इसमें तिरुवोणम तक हर दिन फूलों की एक नई परत जुड़ी जाती है। मध्य केरल के त्रिपुनितुरा में आयोजित होने वाला भव्य अथा चमयम जुलूस भी ओणम समारोह का प्रमुख आकर्षण है। इसमें पारंपरिक कला रूपों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष ओणम पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
1: उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृह मंत्री ए नमस्सिवयम ने कीझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है।
3: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तट पर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे राज्य में बाढ़ की समस्या और बढ़ गई है। IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में खासकर कल और परसों बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ा बलंग नदियों ने बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केंदुझर और केंद्रापड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 500 से ज्यादा गाँव में लगभग 270,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा।
1: महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक

और माता काली के परम भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लोक तथा आधुनिक गीतहरूको प्रस्तुतिपछि अब सुन्नुहोस् समाचार।
1: यो आकाशवाणी हो, समाचार मानिक लामाबाट सुन्नुहोस्। मुख्य समाचार। राष्ट्रिय परीक्षण एजेन्सी एनटिएले यस वर्ष जुनमा आयोजित युजिसी नेट परीक्षाको 84 विषयहरूको लागि अस्थायी उत्तर कुञ्जीहरू जारी गरेको छ। झारखण्ड लोकसेवा आयोग र झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोगमा भर्ना हुने उम्मेद्वारहरूले आन्दोलन अझ तीव्र पार्दै मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनको राजीनामाको माग गरेका छन्। देशले आज पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीलाई उहाँको पुण्यतिथिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहेको छ। मौसम विभागले भोलिसम्म अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बङ्गालको गाङ्गेय क्षेत्र, ओडिसा, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डमा ओरेन्ज अलर्ट जारी गरेको छ। अनि बिडब्ल्युएफ विश्व ब्याडमिन्टन च्याम्पियनसिप भोलि नयाँ दिल्लीको इन्दिरा गान्धी स्टेडियममा सुरु हुँदैछ। राष्ट्रिय परीक्षण एजेन्सी एनटिएले यस वर्ष जुनमा आयोजित युजिसी नेट परीक्षाको 84 विषयहरूको लागि अस्थायी उत्तर कुञ्जीहरू जारी गरेको छ। उम्मेद्वारहरूले 18 अगस्तसम्म यी उत्तरहरूलाई चुनौती दिन सक्छन्। त्यसो गर्न तिनीहरूले युजिसी नेट पोर्टल मार्फत अनलाइन आवेदन दिनुपर्नेछ। प्रत्येक उत्तरलाई चुनौती दिन 200 रुपियाँ शुल्क लाग्नेछ। उम्मेद्वारहरूले आफ्नो आपत्तिको लागि समर्थन कागजातहरू पनि पेश गर्न आवश्यक छ। एनटिएले भनेको छ, अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पेश गरिएका आपत्तिहरू स्वीकार गरिने छैन। शुल्क भुक्तानीको अन्तिम मिति पनि 18 अगस्त हो। एनटिएले तीन विषयहरू अङ्ग्रेजी, वाणिज्य र समाजशास्त्रको प्रश्नपत्रमा सम्भावित त्रुटिहरू सम्बन्धी गुनासोहरूको जाँच गर्न एक समिति गठन गरिएको जानकारी दिएको छ। समितिको सिफारिसको आधारमा यी तीन विषयहरूको बारेमा छुट्टै सार्वजनिक सूचना आज जारी गरिनेछ। एनटिएले उम्मेद्वारहरूलाई आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट र प्रमाणित सामाजिक सञ्जाल ह्यान्डलहरूमा प्रदान गरिएको जानकारीमा मात्र भर पर्न सल्लाह दिएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा शुभकामना दिने वैश्विक नेताहरूप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको छ।
2: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतन्त्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भी शामिल रहे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने रूपियो की शुभकामनाओं के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, साइप्रस, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों को भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतले 18 अगस्त नयाँ दिल्लीमा ब्रिक्स देशहरूको पर्यावरण मन्त्रीहरूको 12 बैठक आयोजना गर्नेछ। यसअघि पर्यावरण कार्य समूह र जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास सम्बन्धी सम्पर्क समूहका अधिकारीहरूको बैठक आयोजना गरिनेछ। भारतको अध्यक्षतामा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको विषयवस्तु लचिलापन

0: नवाचार सहयोग अनि स्थिरताको निर्माण हो। पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री भूपेन्द्र यादवले ब्रिक्स पर्यावरण मन्त्रीहरूको बैठकको अध्यक्षता गर्नुहुनेछ। मन्त्रालयले यो बैठक अर्थपूर्ण छलफलमा संलग्न हुन, सहमति निर्माण गर्न र पर्यावरण सहयोगलाई बलियो पार्न एक मञ्चको रूपमा काम गर्ने बताएको छ। झारखण्ड लोकसेवा आयोग र झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोगमा भर्ना हुने उम्मेद्वारहरूले आन्दोलन अझ तीव्र पार्दै मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनको राजीनामाको माग गरेका छन्। भर्ना परीक्षामा भएको कथित अनियमितता विरुद्ध विद्यार्थीहरूले नयाँ विरोध प्रदर्शनको घोषणा गरेका छन्। सुन्नुहोस् हाम्रो संवाददाताबाट एक रिपोर्ट।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: समाचार आकाशवाणी बाट सुन्दै हुनुहुन्छ। देशले आज पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीलाई उहाँको पुण्यतिथिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहेको छ। भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री वाजपेयीको 2018 आजका दिन निधन भएको थियो। अटल बिहारी वाजपेयीले देशको 3 प्रधानमन्त्रीको रूपमा सेवा गर्नुभयो। वर्ष 1996 उहाँको पहिलो कार्यकाल केवल 13 दिन मात्र टिक्यो। त्यसपछि उहाँले 1998 1999 लगभग 11 प्रधानमन्त्रीको रूपमा सेवा गर्नुभयो। उहाँले 1999 2004 पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्नुभयो। वर्ष 2015 उहाँलाई देशको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्नबाट सम्मानित गरिएको थियो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज दिल्ली स्थित पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीको स्मारक सदैव अटलमा उहाँको पुण्यतिथिमा पुष्पाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। यस अवसरमा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, राज्यसभाका उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह, दिल्लीका मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता र भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष नितिन नवीनको पनि उपस्थिति रहेको थियो। सामाजिक सञ्जालको एक पोस्टमा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णनले अटलजीको विरासत देशको लागि प्रेरणाको स्रोतको रूपमा काम गरिरहने बताउनुभयो। गृहमन्त्री अमित शाहले पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीले प्रधानमन्त्री बन्नु अघि लामो समय विपक्षमा बिताएको बताउनुभयो। तैपनि उहाँले कहिले आफ्ना सिद्धान्तहरूमा सम्झौता नगरेको कारणले गर्दा उहाँलाई अजात शत्रु भनेर चिनिन्थ्यो। श्री शाहले यी टिप्पणीहरू आज राजस्थानको चितौडगढमा अटल बिहारी वाजपेयीको पुण्यतिथिमा उहाँको प्रतिमा अनावरण गर्दै गर्नुभएको हो।
2: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सब के बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। 1.5 करोड़ से अधिक लागत से अटल जी के व्यक्तित्व जैसी भव्य प्रतिमा यहाँ पर प्रस्तापित की है। इसके लिए काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन देना चाहता हूँ।
0: मौसम विभागले भोलिसम्म अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगालको गांगेय क्षेत्र, उडिसा, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डमा धेरै भारी वर्षा हुने ओरेन्ज अलर्ट जारी गरेको छ। भोलिसम्म हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश र पूर्वोत्तर भारतका केही भागहरूमा पनि भारी वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ। मौसम विभागले आगामी 2 दिनमा आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, बिहार, झारखण्ड र अण्डमान र निकोबार टापुहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङ पर्ने पूर्वानुमान व्यक्त गरेको छ। दिल्लीको लागि मौसम विभागले आज साँझदेखि रातिसम्म हल्का वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेको छ। BWF ब्याडमिन्टन च्याम्पियनसिप भोलि नयाँ दिल्लीको इन्दिरा गान्धी स्टेडियममा सुरु हुँदैछ। यो प्रतियोगिता 23 अगस्तसम्म चल्नेछ। भारतले यो प्रतियोगिता दोस्रो पल्ट आयोजना गर्दैछ। यो च्याम्पियनसिप देशमा पहिला 2009 आयोजना गरिएको

रब अघिल्लो गीत सुल्तानोज फिल्म कवि अलविदा नकहिनाबाट शंकर महादेवन कारालिसा मोन्टेरो अनि शफाकत अमानत अली को शर्मा

0: आज हम जो गीत आपको सिखाने जा रहे हैं उसका भावार्थ है, भारतवर्ष सांस्कृतिक दृष्टि से सदा से एक रहा है, आगे भी एक सूत्र में बंधा रहेगा और हम मिलजुल कर देश का विकास करेंगे। विकास के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को हम अपनी एकता के बल पर अवश्य ही दूर करेंगे। गीत लिखिए, गीत के बोल हैं, हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे। क्या लिखा?
1: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे।
0: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे, यह स्थाई है। पहला अंतरा लिखिए, अंतरे की पहली लाइन है, मिलकर कदम बढ़ाएंगे, मिलकर कदम बढ़ाएंगे। दूसरी पंक्ति है, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। हमको रोक सके ना कोई, हमको रोक सके ना कोई, हम वायु का वेग हैं। मैं पहला अंतरा दोबारा पढ़ता हूँ, मिलकर कदम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हमको रोक सके ना कोई, हम वायु का वेग हैं। लिखा?
1: जी सर।
0: आप पढ़िए पहला अंतरा,
1: मिलकर कदम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हमको रोक सके ना कोई, हम वायु का वेग हैं।
0: ठीक है, यह पहला अंतरा है। इसके बाद हमारी स्थाई आएगी, हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे। हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे। दूसरा अंतरा लिखिए, हम किसी से कम नहीं। क्या लिखा?
1: हम किसी से कम नहीं।
0: हमें किसी का डर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। तीसरी पंक्ति है, एक एक मिल ग्यारह होते, एक एक मिल ग्यारह होते, हम सब बड़े दिलेर हैं, हम सब बड़े दिलेर हैं। मैं दोबारा पढ़ता हूं दूसरे अंतरे को, हम किसी से कम नहीं, हमें किसी का डर नहीं, एक एक मिल ग्यारह होते, हम सब बड़े दिलेर हैं। क्या लिखा आपने? आप पढ़िए,
1: हम किसी से कम नहीं, हमें किसी का डर नहीं, एक एक मिल ग्यारह होते, हम सब बड़े दिलेर हैं।
0: ठीक है, यह था दूसरा अंतरा। इसके बाद फिर स्थाई आ जाएगी, हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे। लिख लिया?
1: जी सर।
0: अब तीसरा अंतरा लिखिए, जीवन सरस बनाएंगे, जीवन सरस बनाएंगे, धन धान्य उपजाएंगे, धन धान्य उपजाएंगे। तीसरी पंक्ति है, कोई मानव दुखी रहे ना, कोई मानव दुखी रहे ना, ऐसी सबकी तेर है। लिख लिया?
1: जी सर।
0: अब मैं पढ़ता हूं, आप देख लीजिए, जीवन सरस बनाएंगे, धन धान्य उपजाएंगे, कोई मानव दुखी रहे ना, ऐसी सबकी तेर।

0: रहे। ये था हमारा तीसरा अंतरा, फिर हमारी स्थाई आ जाएगी। हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे। ठीक है
1: जी सर।
0: अब मैं पूरा गीत पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ बोलिए। हम एक हैं,
2: हम एक हैं,
0: हम एक थे,
2: हम एक थे,
0: हम एक रहेंगे,
2: हम एक रहेंगे,
0: मिलकर कदम बढ़ाएंगे,
2: मिलकर कदम बढ़ाएंगे,
0: आगे बढ़ते जाएंगे,
2: आगे बढ़ते जाएंगे,
0: हमको रोक सके ना कोई,
2: हमको रोक सके ना कोई,
0: हम वायु का वेग हैं,
2: हम वायु का वेग हैं,
0: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे,
2: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे।
0: दूसरा अंतरा है, हम किसी से

0: बड़े दिलेर हैं,
1: हम सब बड़े दिलेर हैं।
0: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे।
1: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे।
0: जीवन सरस बनाएंगे,
1: जीवन सरस बनाएंगे।
0: धन धान्य उपजाएंगे,
1: धन धान्य उपजाएंगे।
0: कोई मानव दुखी रहे ना,
1: कोई मानव दुखी रहे ना।
0: ऐसी सबकी टेर है,
1: ऐसी सबकी टेर है।
0: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे।
1: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे।
0: लिख लिया आपने ये गीत?
1: जी सर।
0: अब इस गीत को सीखते हैं।
2: तो गीत शुरू करें?
3: जी सर।
2: ये गीत ताल कहरवा में निबद्ध है, तो हम पहले इसका स्थाई सीखते हैं। स्थाई सा से शुरू हो रहा है।

0: vede să vede vid. Adesso dam pasitate te saca, guma pa vida vishya pa vala. Adesso mula nanu santatani, karmanu bandini manishya loke. Naru pamasya tvatho palabati, nanto na chadena ta samprachishta. Ashatamenam subirura mula, masanga sashrena girana chetva. Tadapadam tatparimai tabiyam, yespinga thana nivantanti buya. Tave vachadiyam purusham pabatte, yata पवित्र पसीते पुराने नर्मान मुआजिद संग दोसा आदत मनित्या विनिवित कामा तंत्वे निप्ता सुखदू का संके गाचंद मूला पदमा व्यंतत नतत दासते सुबियो न सांसान को न पावक यद गत्वा न निवातांति तदमा परमम ममा ममी आमसो जीव लोके जीव भूता सनातना मना सष्टा निंद्यानी पाकिस्तानी कर्षति शरीरम यत्त बाबति यच का पिता मधीश्वर गिनते तानी श्यामाति भान गर्दा निवसत सोत्रम च चस्पसम च प्रश्नम गानवे वचत आदि सब मन श्यामिशन उबसेवते उत्क्रामंत विस्तो वापी मुंजा नंबा गुणानीत प्रेमणाडान पसंदी पसंदी गानु चक्चुचा यतंतो गिने सैर्यम पश्यंतात मन उवस्थितम यतंतो व्यक्तिदत मानु नर्यम पसत मर चेदसा यदा दित्य कतम तेजो दगत भास देखिल यच्चा नमस्या चनु तत्तेजो विधिमामकम गाम विश्वचा भूतानी दारेयमेयम मुजसा पुष्णानी चौषधि सर्वसोम भूता रहात्मका आम्ब स्वनर भूता पानम द्यामासित पान पान समय तपचमिनम चतुर्विधम सर्वसचाम निजिष्टम निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञान मोपहनम च वेदस्य सर्वे रवे वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदेह चाहम दामिमु पुरुषो लोके क्षर साक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुतश्च क्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तन परमात्मितुर्यार्थ यू लोकत्रे माहेश्य शेवर्तव्यस्वर एकस्माक्षरमति त्वमोक्षाय दति चोत्तम अतस्मि लोके वेदित परित पुरुषोत्तम यो मामे मम सम्मूल जानति वजतोत्तम स सर्वाविद् भजति मम सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्त्वा मायानग एतद्बुद्धबुद्ध मम सत्कितकित सभार्थ ॐ तत्सदिति श्रीमद्भागवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यमयोगशास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नाम पञ्चजस्वदाय धन्यवाद
1: र नानी हो नयाँ साथी जागृति भट्टराईले यति सानो उमेरमा नै गीताका श्लोक कति मुखस्थ गरेर हामीलाई सुनायो जागृतिलाई यसको निम्ति जोडले ताली बजाइदेऊ र नानी हो जागृति भट्टराईको कविता साथै पवित्र ग्रन्थ श्रीमद् भगवद् गीताबाट श्लोकहरू सुन्दा सुन्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएकोले अर्को आइतबारसम्मलाई हामी पनि बाल बगैँचा कार्यक्रमबाट बिदा लिऊ नमस्ते।

0: श्रोताहरू अहिले सुन्नुभयो कार्यक्रम बाल बगैँचा। अबको केही समय आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको समाचार रिले गरी सुनाउनेछौ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राजस्थान के अरवर में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि 2014 के बाद से देशभर में कई विकास कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों की अंतिम उत्तर पुस्तिका जारी कर दी है। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रत्येक उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एजेंसी ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार्य नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्माण क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। पुदुचेरी में आज डी ज्वेरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृह मंत्री ए नमस्सिवायम ने कीजूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज नेपाल की 3 दिन की सरकारी यात्रा पर रवाना हुए। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य संबंध मजबूत करना है। जनरल सेठ कल टुंडी खेल के सेना मंडप में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और नेपाल के सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल विमान को लेकर जांच आयोग के गठन के बारे में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया। इकाई ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने के कारण उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। बैतरणी, ब्रह्माणी, सालंदी, जालका और बुद्ध बांगल नदियों के उफान के कारण 6 जिलों में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इनमें बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, क्योंझर और केंद्रपाड़ा जिले शामिल हैं जिन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 6 विकेट पर 408 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण आज पहले और दूसरे सत्र का खेल नहीं हो सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हामी आकाशवाणी खरसाङबाट बोलिरहेका छौं। एफएम 103.5 मेगाहर्ज लगायत न्यूज ओन एयर मोबाइल एप साथै आकाशवाणीको दार्जिलिङ एफएम 100.2 मेगाहर्जमा मनोरञ्जनात्मक साथै विविध जानकारीमूलक कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। श्रोता र म देवेन्द्र, प्राविधिक मित्रहरू पवन डुक्पा अनि राजीव सुब्बा लगायत प्रस्तुति सहयोगी नमिताको तर्फबाट

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: यो आकाशवाणी खरसाङ हो। अब को केही क्षणमै आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रको समाचार समप्रसारण गरी सुनाउनेछौं।

0: श्रोताहरू अहिले सुन्नुभयो विविध कलाकारहरूको स्वरमा लोकगीत। अबको केही समय आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रका कार्यक्रमहरू समप्रसारण गरी सुनाउनेछौँ। प्रथममा सुन्नुहुनेछ समाचार सन्ध्या।
1: भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
3: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
2: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
3: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है।
2: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थ

0: व्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की। इससे पहले गृह मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में की प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
1: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship, and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will shape the economics and the society's future.
0: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। NTA ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
2: लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बाईपास किया जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभे

0: हिंदू अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद एन मालवीय और डॉ. प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जांच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सके। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
1: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकरों और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जाँच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
2: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके प्रभावित है और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंदुझर और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2

0: शर्तों से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches development projects worth over 6,400 crore rupees at Alwar in Rajasthan, asserts empowering youth, poor, women and farmers essential for achieving goal of developed India by 2047. Vice President C.P. Radhakrishnan calls upon students to embrace nation first and contribute to Viksit Bharat 2047. India dismantles large-scale areca nut import racket from Bangladesh, uncovering 2,500 crore rupees revenue loss, 9 arrested. Red alert issued for very heavy rainfall over Gangetic West Bengal and Odisha tomorrow. Ukraine and Russia exchange missile and drone strikes, claiming 11 lives on both sides. In hockey, India begin campaign with 2-2 draw against China in FIH Women's World Cup in the Netherlands. And BWF Badminton World Championships start in New Delhi tomorrow. PV Sindhu and Lakshya Sen lead the India's challenge. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state.
2: If we want to make India a fully developed nation by 2047, we need to empower the youth, the poor, farmers and women. With this objective, farmers are being provided with the Kisan Samman Nidhi scheme benefits. Dairy facilities worth 500 crore rupees are being established for livestock. Employment opportunities are being created for the youth and the BJP government has taken steps to expand Saras Dairy for women.
1: He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government had introduced major schemes for farmers and continuously increased the minimum support price.
2: Not a single year between 2014 and 2026 has passed without the government launching a major scheme for farmers. Today, I want to tell the Congress leaders that if anyone has procured the highest quantity of food grain at the minimum support price MSP, it is the Narendra Modi government.
1: Vice President C.P. Radhakrishnan has called upon graduating students to use their knowledge, skills and innovation for nation building, guided by the principle of nation first. Addressing the 22nd convocation of SRM Institute of Science and Technology at Katana

श्रोता यति सुन्नुभयो अखिल भारतीय कार्यक्रम अन्तर्गत नाटक रानी दुर्गावती, नाटककार योगेश त्रिपाठी, संयोजक पुष्पेन्द्र सौरभ, निर्देशक विनोद कुमार। यस नाटकमा भाग लिने कलाकारहरू मेनुका प्रधान, अरुण प्रकाश राई, दिपेश सुब्बा, सुबोध शर्मा, बालकृष्ण थामी, मदन कुमार फुजेल, पूर्णिमा थापा, प्रकाश लामा, राम कुमार प्रधान अनि देवेन्द्र छेत्री।

0: संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है गिटार वादन। कलाकार हैं रितम सरकार। केवल 9 वर्ष की आयु में आपने संगीत की तालीम लेने की शुरुआत की और आपके पहले गुरु थे प्रसिद्ध सितार वादक श्री श्यामल चट्टोपाध्याय। आगे चलकर आपने दिग्गज गिटार वादक पंडित देवाशीष भट्टाचार्य से प्रशिक्षण प्राप्त किया। आपकी कलात्मकता केवल गिटार तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि तबला, सरोद, गायन और योग आधारित सांगीतिक प्रस्तुतियां भी आपकी पहचान बनी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक रीड के कलाकार रितम सरकार ने संगीत की राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी प्राप्त की हैं। रितम सरकार अखिल भारतीय संगीत समारोहों के साथ साथ बंगाल के संगीत सम्मेलनों में भी भाग लेती रहती हैं। आप एक ऐसे गिटार वादक हैं जिन्होंने संगीत के विभिन्न सम्मेलनों तथा कार्यक्रमों के अलावा संगीत की कार्यशालाओं में भाग लेने और व्याख्यान देने के लिए देश और विदेश की यात्रा की। यही नहीं, आप कैंसर से पीड़ित वंचित बच्चों की सहायता हेतु आयोजित सामाजिक निधि संग्रह कार्यक्रमों के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शरीर के 7 चक्रों पर आधारित योग की एक परियोजना पर भी काम कर रहे हैं।
1: Tonight in the Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we present guitar recital by Ritam Sarkar. Beginning his musical journey at an early age of 9 years, Ritam Sarkar was initially trained under the sitar maestro Sri Shyamal Chattopadhyay and thereafter under the able guidance of guitar legend Pandit Debashish Bhattacharya. Later, he expanded his musical artistry through exposure to tabla, sarod, vocal and meditation-based musical presentations. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Ritam Sarkar has also been a holder of national and state scholarships in music. A proud participant at All India Music Festivals and All Bengal Music Festivals, Ritam Sarkar is a widely travelled guitar artist both in India and abroad to participate in music concerts and programs, musical workshops, as well as lecture demonstrations. Besides, Ritam Sarkar is actively involved with social fundraising events for the benefit of underprivileged children suffering from cancer and is also working on a meditation project on the 7 chakras of our body.
0: Aaj raat Ritam Sarkar ke saath tabli par sangat kar rahe hain Oshit Jana.
1: Tonight Ritam Sarkar is accompanied on the tabla by Oshit Jana.
0: Guitar vadan ke is karyakram ki shuruaat aap raag Malkons ke saath karenge. आलाप जोड़ और झाला से सज्जित यह बंदिश विलंबित झपताल और द्रुत तीन ताल में आपत्त है।
1: रितम सरकार बिगिंस हिज गिटार रिसाइटल विद राग मालकोस विद आलाप जोड़ एंड झाला। द कंपोजिशन इज सेट टू विलंबित झपताल फॉलोड बाय द्रुत तीन ताल।

0: गिटार वादन के अंतर्गत आप ऋतम सरकार से राग मालकौंस सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग मेघ। आलाप से इसकी शुरुआत होगी और गत में इसकी बंदिश रूपक ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Rag Malkos in the guitar recital by Ritam Sarkar. Continuing with the recital, he now presents Rag Megh. It begins with an alap and the composition is set to gat in rupak tal.

0: आप रितम सरकार से राग मेघ सुन रहे थे। गिटार वादन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग किरवानी के साथ करेंगे। यह बंदिश कहरवा ताल में आपत्त है।
1: You were listening to Rag Megh. Ritam Sarkar concludes his guitar recital in Rag Kirwani. The composition is set to Kaharwa Taal.

0: गिटार वादन के अंतर्गत आप रितम शौरकार से राग किरवानी सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे औषित जाना। और इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यहीं संपन्न होती है।
1: You were listening to Raag Kirwani in the guitar recital by Ritam Sarkar. He was accompanied on the tabla by Oshit Jana. And with this, we come to the end of Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार में मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्ण ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज UGC नीट परीक्षा के 3 विषयों, अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की भी शुरुआत की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य के स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशहरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।